0: जय हो।
1: समय बड़ी कीमती है भजनों सजनों, मारो एक ही भजन है क्यों आप प्रचार करे सामराई गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे।

0: पण सब जीव आप समान जाने आप तनो गुण बिना पशु समान अजिया गलतनो मिनक मूंगो जान राखे मिनक पणो। तो गाय जिंदगी सेवा कमाए मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को टाइम इज मनी, समय देने क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने। इंसान को इंसान होना नहीं आया, हंसते तो सभी खिल खिल पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं, अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं, आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में। इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में, अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया, तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा। गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में, कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। बरा ये सत्संग का दरिया नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है दाग पाप का धोइलो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे। मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, नरक गामी होना पड़ेगा। होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक हो गया इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया, आंख में शर्म, होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया, आंख में शर्म, होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, ने तो खुद उदास रहो और ने दूसरों को उदास रहने दो। हो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूरज आसमान पर इसे ले आ जमीन पर। एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूरज तारा पांव चूमे। यूं ब्रह्मानंद समझावे, बार बार नर्तन नहीं पावे, ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो गौ माते की
1: जय हो।
0: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना, जो आपने नाम लेवे, जो आप भजन सुनता रहे, जो साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया, आप अपरा विचार रखी, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
1: जय हो।
2: सर जाना नहीं है, बैठना है। गावना है दो। जय हो। आप करना मान है।

तन त्यागी जार मन वो बेरागी सुरत साहेब सू लागी। हाँ तन त्यागी जार मन वो बेरागी सुरत साहेब।

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री अब मन संचालन जो इज्जत दे स्वकृति दे त्यू भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गो माता की।
0: यूं है गौ माता है नी गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृति में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करूं मैं थोड़ी सी भजन गाऊं नाला ज्यादा है टाइम इज मनी। मैं आप बात बार बार कहूं कि समय दनेर मैं ही ज्यादा बेलड़ा उड़ोदन उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेमरा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपीचंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है। तो वीनी तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे कि इरो वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनों महीना डोड महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कोन मिलियो महीना डोड महीना तक हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेन कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बात है ध्यान एक दिन संयोग भी ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न कोन मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ने ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालो राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावता देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन के बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इनकी तो कोई मगतो ही कोनी भूखा मरे है थे जा इन कह दो के माने राजा के दरबार में चलो मां के राजा का गढ़ में चलो तने दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी वो कामदार जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है आठा कोनी कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति का देन दान मैं मांग रहा हर वारी मैं उनका हूँ भिकारी मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी मैं उनका हूँ भिकारी बात मत ओटला तुम भूखा मरे तुम हाल माने गढ़ में जीम ले जन थारा राजा ने पूछ के मने क्यों जिमावो और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मन क्यों जिमाओ अरे क्यों कहीं जिमाओ राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे तुम भिकारी है तुम मगतो है तुम भूखा मरे धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है धर्म री माँ कौन है अरे वो स्वीकार कौन कर बो के धर्म री माँ कौन है वो राजा भी बुद्धिजीवी हो बो की धर्म री माँ है दया मन थर माता दया आई जनी तुम्हें जिमाऊ वा जन तर राजन और जाय पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है अरे राजन वो माने कौन बो के धर्म रो बाप कौन है जन वो सोचली मन में आप इन भिकारी समझा भिकारी तो कौन आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है जाय देख के वीर नूर पहली मराशी रेट वाई क्या करी नहीं वो भगवा बेग एक अग्नि है इमे सब चीज जले ई वास्ते बिरु नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना कौन कौन आगले संत महात्मा बसम लगावता शरीर के बसमी ताकि शरीर भूंडो लागे डाडी यूं बड़ा अवता ताकि कुरूप दी के शरीर बिन शरीर ने भी सजावता कोनी बबूती लगाई ली तो बीरो नूर बीरो तेज कोई छानो थोड़ो ही हो तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर्य छिपे नहीं बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं दातार छिपे नहीं गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट दिखाया ये योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं भभूत रमाया जाय प्रणाम करण की ओसा धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष क्यों जन राजा मणि चार अंगल टुकड़ा में संतोष है जो दस बीस पचास बयसत होई हजार तो लाख मंगेगी जो दस बीस पचास बयसत होई हजार तो लाख मंगेगी कोटि के अरब खरब बये तब धरापति होने की चाह जगेगी उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सेठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी मसंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़ भागी भरतरी राजा भूप भयो वेरागी इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं, भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं, करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं, करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं, करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं। आर्ट इज लाइफ।
1: जय हो। ढोलक वाला पधारो ने ढोलक हाँ ढोलक बजावा होने ढोलक बढ़िया ढोलक बजाओ Thank you.

पीला बुसरट वाला पधारो सा, ढोलक बजाव वास्ते पधारो। पीला बुसरट वाला ओ मारसा, आओ ढोलक बजाव आओ। अशोक जी ढोलक वाला, चलो ढोलक बजा।

की जय हो। देव देवपुरी सा महाराज की जय हो। महात्मा नंद जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज की जय हो। सत स्वागम कीजिए और तजिए लो भयंकार, भूल सुख परिधि रे अण सत्री संगत रे माय। तप का वर्ष हजार है और सत्री संगत पलये, इनके बराबर पहुंचे नहीं सुखदेव किया विवेक। बोलो सतगुरु भगवान।

0: दीप नारायण भगवान की जय। ओम नमो ओम ओम इज द इटर्नल
1: ओम ये नेकोनेचने
0: ओम कार बिंदु संयुक्तम नित्य धायन्ति योगी नम ईच एंड एवरी योगी ऑल्सो दे मेक प्रणाम टू द ओम ओम कार बिंदु उसके ऊपर में बिंदु है
1: तो यस बिंदु अब शिष्य योगी से कलानी प्रत ओम
0: विमे के ओम
1: कृष्ण में ओम
0: मात्रा एंड बिंदु
1: मात्रा अब बिंदु
0: सो दिस इज अवर गुरुदेव ऑल भगवान ऑल गॉड यू सेड आमेन व्हाट इज आमेन आमेन इज कमिंग फ्रॉम ओम
1: A vy to je všude Gurudev, je to Bůh, vy říkáte Amen, ale to je to samé, co Om. To pochází z Om.
0: Allah, it is also Allah, yeah?
1: A my říkáme Allah.
0: It's the same language.
1: Je to jenom jazyk, ale jenom v jazyce.
0: So, Om Namo Sri Prabhu. Sri means prosperity.
1: Sri znamená blahobyt.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: From the heart, always. Joy.
1: Ze radost vždy ze srdce.
0: Don't make in your heart, in your thoughts,

0: शांति ही शांति ही शांति ही।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदु। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपनम सजति सर्वम संध्या दीपम सर्व सत्यम। ओम श्री दीप नारायण भगवान।

ब्रह्म विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमाम्यम ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, भक्तास, डियर वंस, राउंड द वर्ल्ड, दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत, जाडन राजस्थान, पाली, फ्रॉम द गुरुकुल। Gurukul means that education center where the master, the Gurudev, is giving the knowledge. The schools, the colleges, education centers, all began with the rishis. There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. Takshila kaun se desh mein tha? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया, तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स, सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल, ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल, वेयर द स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. Our Gurukul adopts the students, the children, as a manas putra. Ek to manas putra hota hai, jisko hum, hamari putra ke saman, adar karte hai, pyar karte hai, samajhte hai. Aur wohi chahe aap manas putra kaho, या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें, बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन, द टाइम the school begins from 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyan Putra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, Pitambar, like gold, and Bhagwan Krishna used to have Pitambar.
And you see, Pitambara is a color of the flame of the fire. So, the Vidya.

studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural, traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञानार्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है, हम पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर हैं, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये, इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं, 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम? अरे बहुत, तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है। 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ, और वो पैसे जो हैं जो हमारे मस्तिष्क में हैं वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, the language, the first language what we call is Sanskrit. Sanskrit is the mother of all the languages around the world, maybe 2-3 not. Everywhere there is the words of the Sanskrit language in many countries. And also the culture goes from the Bharat. All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there
But in Australia is also where the South Indians, which we call

0: द अबरिजिन्स। तो अबरिजिन्स के अंदर वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं। सब कुछ है अपने देश के अंदर में, और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, है? हर बाला है देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञान पुत्र इज हियर, दे आर कमिंग एंड वी आर वेलकमिंग देम, एंड यू आर मोस्ट वेलकम to help for the education. Thank you very much. And now I would like to give the words to our Mahamandaleshwar, Sri Gyaneshwar Puri Ji Maharaj. Gyaneshwar Puri, Gyanesh, naam hi Gyan aur Ishwar, do mil jaye to kya chahiye, aur Gyan nahi aur Ishwar mil jaye to bhi wo dabke kyun aaye, kone hu? है? तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है, तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया, समझिए। तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड इन संस्कृत इन एंड इन क्रोएशियन, चार लैंग्वेज एट वंस स्पीक्स, वही माँ मंडलेश्वर बन सकता है बेटा। फोर लैंग्वेज, Hindi, Sanskrit, English, Croatian, and maybe someone more. So, हमारे ज्ञान पुत्रों को, he will introduce our ज्ञान पुत्रास and our हमारा ब्रह्मचारी of this आश्रम. So, ज्ञानेश्वर जी, आप बच्चों को give the children that kind of suggestion and instructions that they get inspiration to study properly. Baito. Sadeep Narayan Bhagwan ki
1: jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva ki jai. Hindu Dharam Samrat Smara Krishna Bhagwan ki jai. Vishwa Guru Mamalesha Paramahamsa Swamiji Satta Guru Deva ki jai. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एज यू ऑल नो, आवर श्री विश्वदीप गुरुकुल is a school for which for the last, let's say, 20 years is educating the children. Some of them you can see here. it was a Swamiji's project which our dear Vishwa Guruji started long back, because education in a country which is with so huge population like India, it's very tricky. The system of Gurukuls, which was used from the ancient times of rishis, were still active in the beginning of 19th century, but with the coming of British to consolidate their power, they slowly dismantled this Gurukul system and started the English-based system. And but also not for everybody, only for selected people and so on. So the story, what I'm telling you, is from the end of 19th century. And the first school and actually university was actually founded in 1885, so which is quite late in Bombay and so on. So this kind of school, which has very limited approach, left India quite, uneducated. And there were many schools, many children, many villages with without any school or any kind of education. We know in Europe we have different system of numbers. Croatia has 5 million people altogether, which is completely, when we put in Indian terms, this is approximately one city. So India has at the moment 1.5 billion people. We invest, we cannot actually comprehend that it's a really huge number. So it means...
0: And Croatia have 50 lakh, sorry.
1: So we cannot comprehend these numbers that in one village like Jadan, they can be at least 5 to 10,000 students. In the area of Marwar Junction, where our ashram is situated, there can be at least 50,000-60,000, if not more, children who are studying. So now, the problem is how to give education to all these children, because education takes money. Education requires money, education requires books, and so on. So, there are many, of course, the government is doing their best, and there are many NGOs, there are many societies which are helping, and one of societies which Vishwa Guruji formed is under the name of Gyanputra, which basically means the sons of the knowledge. So these people, these children, and the families from whom these children belong, they got free education, free books, free many things. Now, it's not a question of only education, because nowadays in our Western-based education, because of so much subjects we have to study, is actually the moral and thinking that is actually removed. Because to teach morality, it's actually the subject which is the base of all education, because first we get education from our parents. But now the parents go to work when you are 3-4 months old and you go to some kindergarten. So in this Gurukul, Swamiji is trying to bring back this old tradition, this old Indian tradition of rishis, in which the morality should be included in our, in education. But from the beginning, not from the end. Not when you go to the university that you start to learn about what is the morality and different ways and so on, but from the beginning. Because now, in our science project, let's say, they can teach you how to make TNT, they can teach you how to make the bomb, gun, or whatever. But they will not teach you why to use it and how to use it. Not how to. They will teach you how to use it, but not why not. So this is the basic problem, which now we can see in all around the world, with all the many, all the things terrible that are happening. So because the people have the knowledge how to use the things in a bad way, but they don't have the mentality to decide that this is good or not good. So this thing Swamiji is trying to achieve in this Gurukul, to have according, because the modern education is modern education, we have to have it to be competitive in this world, but still on top of that, Gurudev is trying to put one more layer, which was actually before, even in our country was there, but then now we have these changes in education. But everything is going for the globalization, how the people can move from one place to another. So the children are actually educated in very short spectrum. Here I had the opportunity to study with one teacher who was, she was brought up in a Gurukul system. And in a Gurukul, they have studied all the Bhagavad Gitas and Ramayana and Vedas and this and that. So they studied everything. So actually, I know, I have first-hand experience that I know that what they were studying, what they were learning in the Gurukul. And our Pushpaji from Jaipur Ashram, from Jaipur Yogsadhana Ashram, which you met many times on webcast, she's also studied in Gurukul, which is a completely different system of study than nowadays, which is very commercialized. So these kind of studies we are trying to give to the people, to the children here, and these children will then hopefully try to improve the status of these villages which is around us. Because the base of the India is in the villages. More than 67% of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. Ab aapke paas ab school mein jaate hai, ab school ka samay ho gaya, chalu bhi ho gaye, ab maine aapke samne baith rahe, to concentration to hai nahi. एक जगह में बैठ नहीं सकते, नींद तो आती रहती है. अभी तो 9 बज गए, तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है. यहाँ का प्रॉब्लम है, जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में, कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है. एग्जाम तो आएगा दिसंबर में, जब एग्जाम आएगा मार्च में, एग्जाम आएगा अप्रैल में, अभी क्या स्टडी करना है. तो आप ऐसे कीजिए, 365 दिन है, आप आज 6 महीना के लिए खा लेना. एक दिन में 4 रोटी आप लेते, ठीक है, सुबह 2 शाम को 2, ठीक है, मान के चलो 5 रहते, 6 लेते, तो 6 महीना में कितना दिन होगा, 180 दिन. 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना, 900 रोटी. तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीना आप फ्री हो गए खाने से. संभव है? इतनी मामूली चीज है. अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है. 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना. तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी 6 महीना की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में. अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे. संभव है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. तो पढ़ना होता है रोज डेली, तो बड़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाता है। हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाए होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ? तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, 1 घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं, कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और क्या माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहां 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव मेनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata and other Upanishads. So definitely we are open university, we are open school. Of course it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwa Guruji, Vishwaguru Swamishwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish. And I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by your work and so on. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu ma kaschid dukha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti.
0: Good. Thank you. Thank you, ne mehuniyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the our Gurukul ke bachche jo hai turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. Only the vidyarthi turn to the. Don't go close to the chela nahi dikhega beta. Tu idhar se khada ho ja. Bas beta yahi khade hoke de ya nazdik aa ja bas. Okay, we will see if when is. Deveshwar Mahadev ki jai, Alak Puri ji Mahadev ki jai, Hindu Dharam Sambrat Satguru Swami Madhavan ji Bhagwan ki jai, Satya Sanatan Dharma ki jai, Bharat Mata ki jai.

मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवेश्वर महादेव की
1: जय,
0: माधव कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: नरसिंह अवतार भगवान की, भक्त और भगवान की
1: जय।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख

0: गुरुदेव भगवान की जय। कम वन सेकंड, ऑन बिहाफ ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली कंडोलेंसेस टू यू एंड योर ब्रदर एंड योर फैमिली। This mala we will put on the photo day after tomorrow in the funeral.
1: Ovu malu stavite na sliku na preko sutra na sahranu.
0: I know it's hard for her, but maybe do you want to say two words? Something. It's okay. It's our family.

0: ओम शरक पुरज महादेव की
1: जय।
0: देवाति देवेश्वर महादेव की
1: जय।
0: सुदीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरज सद्गुरुदेव भगवान की
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरज गुरुदेव
1: की जय।
0: आज के आनंद की सब संदर्शन महात्माओं
1: की
0: माता पिता गुरुदेव की।

श्री तारे भगवान की जय। श्री विश्वनाथ शपरामस्वामी अश्विन जुड़ देव की जय। जुग